0: 2002, la rumeur.
1: लीजिए, कैश तो मुखर्जी भी आ धमके।
2: क्यों बुमा बुम कर रहे हो? देख नहीं रहे हो? मैं घोड़े को घास खिला रहा हूँ।
3: अम्मा यार, हर पांच मिनट के बाद तुम टांगा रोकते हो और घोड़े को घास खिलाते हो। आखिर ये घोड़ा है कैसा तुम्हारा?
2: बस बस साहब, वहीं रुक जाएगा, आगे मत बोलिए। देखिए साहब, जो जी में मुझे बोल दीजिए, लेकिन मेरे घोड़े को कुछ मत बोलिए। घर में मेरी बीबी मुझे बहुत डांटती है।